जूस पड़ा रे वह फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वहला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेख बाके मुब अब्बा पाप दें बनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने